सो मेरे प्यारे लिसनर्स, मेरे स्वीट लिसनर्स, ये मुमकिन तो नहीं है जो दिल ने चाहा वही मिल जाए, वही हर बार हमें मिल जाए। जिंदगी शायद जो है ना इसी का नाम है कि इंसान अपने दिल में बेशुमार ख्वाहिशें लिए फिरता है, किसी के साथ चलने का ख्वाब देखता है, किसी की आवाज को अपनी शामों का सुकून मतलब जो है ना एक तरीके से समझता है, किसी के इंतजार को अपनी आदत बना लेते हैं, और फिर एक दिन सोता है कि हर चाहत का अंजाम मिल जाना नहीं होता। कुछ ख्वाहिशें सिर्फ ख्वाहिशें रह जाती हैं, कुछ लोग सिर्फ याद बनकर रह जाते हैं, कुछ मुलाकातें सिर्फ ख्वाबों में मुकम्मल होती हैं, और कुछ मोहब्बतें दिल के किसी ऐसे कोने में खामोशी से जिंदा रहती हैं जहाँ वक्त भी पहुँच नहीं पाता। और मेरे प्यारे लिसनर्स, में यहाँ ये बात कहना चाहूंगा कि शायद मोहब्बत की खूबसूरती भी यही है कि इंसान किसी को पाने से ज्यादा उसे चाहने के एहसास से जुड़ा रहता है। आज जरा इस बारिश को देखिए, बादलों से टपकता हुआ हर कतरा जैसे किसी अधूरी कहानी का एक जुमला हो, जैसे आसमान भी किसी को याद करके रो रहा हो, जैसे हवा किसी पुरानी खुशबू को अपने साथ लिए गुजर रही हो, और जैसे ये भीगी हुई शाम हमें चुपके से ये बता रही हो कि शाम तो खैर जहर नहीं है, बल्कि अंधेरा अगर हो जाए ना तो शाम हो जाती है, जब अंधेरा हो जाए तो शाम हो जाती है। लिसन, समय क्या बात कर रहा था, कुछ लोग हमारी जिंदगी से दूर होकर भी हमारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन जाते हैं। हमें बारिश में भी अजीब सा तासर मिलता है, ये खामोश दिलों को भी बोलने पर मजबूर कर देती है। खिड़की के शीशे पर गिरते हुए कतरे कभी किसी की आंखों की नमी महसूस होते हैं, कभी किसी की हंसी याद आती है, कभी किसी का नाम भी इख्तियार लबों पर आ जाता है, और कभी दिल चाहता है कि बस कोई सामने बैठा हो, हम कुछ न बोलें, हम कुछ न कहें, वो कुछ न कहे, सिर्फ बारिश जो है ना सुनते रहें, सिर्फ बारिश सुनते रहें और एक दूसरे की खामोशी को समझते रहें। लेकिन हर ख्वाब हकीकत नहीं बनता, हर इंतजार मुलाकात तक नहीं पहुंचता, हर मोहब्बत को मंजिल नहीं मिलती, और हर वो शख्स जिसे हम अपनी दुनिया समझ बैठते हैं, जरूरी नहीं है कि वो हमारी किस्मत की किताब में भी कभी लिखा हो। शायद इसलिए जिंदगी हमें कभी कभी अपनी पसंद की चीज नहीं देती, बल्कि वो देती है कि जो हमें अंदर से मजबूत बनाती है। मगर दिल तो दिल है ना, इसे दलीलें कहाँ समझ आती हैं, इसे तो बस वही चेहरा याद रहता है जिसे देखकर कभी दिल को सुकून मिला था, वही आवाज़ याद रहती है जिसमें कभी अपनायत महसूस हुई थी, वही नाम बार बार याद आता है जिसे बुलाने की हमने हजार कोशिशें की थी। और आज की इस बारिश में अगर आप भी किसी को याद कर रहे हैं, अगर किसी की कमी आपके पास भी बैठी हुई है, अगर किसी की खामोशी आज भी आपके दिल में शोर बर्पा करती है, तो यकीन जानिए कि आप अकेले नहीं हैं। इस दुनिया में बेशुमार दिल ऐसे हैं जो मुस्कुराते जरूर हैं, मगर अंदर कहीं किसी एक शख्स के इंतजार में खामोश खड़े हैं। शायद मोहब्बत का सबसे खूबसूरत पहलू यही है कि इंसान किसी के साथ ना होते हुए भी उसके लिए दुआ करता रहे, उसके खुश रहने की ख्वाहिश करता रहे, और कभी कभी अपनी ख्वाहिश को खामोश करके उसकी खुशी को अपनी मोहब्बत की आखिरी दलील बना देता है। तो इस बारिश में या इस बारिश को सिर्फ जाना बारिश ना समझिएगा, इसे एक पैगाम समझिएगा, एक याद समझिएगा, एक लम्हा समझिएगा जिसमें आप अपने दिल से पूछें कि आखिर वो कौन है जिसका ख्याल आज भी बारिश के हर कतरे के साथ जाना महसूस होता है, हर कतरे के साथ आपके करीब आ जाता है। कौन है वो जिसे आपने वक्त के हवाले कर दिया है मगर दिल से आज तक जुदा नहीं कर सके? और शायद इसी सवाल का जवाब आपकी अपनी कहानी का सबसे खूबसूरत बाब हो। मेरे मोहतरम मोहब्बतों भरे दिलों में बसने वाले बावकार सामीन, आज की ये भीगी हुई सुबह, ये खामोश बारिश, ये ठंडी हवा और दिल में उतरती हुई यादें शायद हम सबसे एक बात कह रही हों, जो दिल ने चाहा जरूरी नहीं है वो मिल जाए, लेकिन जो दिल ने सच्चे दिल से चाहा हो वो कभी मुकम्मल तौर पर दिल से निकलता ही नहीं है। कुछ लोग किस्मत में ना हो तो भी यादों में हमेशा के लिए रहते हैं, कुछ फासले ख़त्म ना हो भी तो मोहब्बत कम नहीं होती, और कुछ कहानियां मुकम्मल ना भी हों तो बहुत खूबसूरत होती हैं। बस इसी खूबसूरती को अपने दिल में संभाल कर रखिएगा, क्योंकि मेरी आज की बारिश
یہ خاموشی اور یہ محبت بری باتیں ابھی ختم نہیں ہوئیں، ابھی تو کچھ باتیں باقی ہیں، کچھ احساس باقی ہیں، کچھ راز باقی ہیں، اور شاید کسی ایسے شخص کی یاد بھی باقی ہے جس کا نام آپ نے بھی کسی سے نہیں کہا۔ تو پھر آج کی صبح اس اداس بھیگی اور محبت میں ڈوبی ہوئی کیفیت کو یہیں آگے بڑھنے کے لیے میرے لمحات میں اگلی نشست کے لیے مطلب جو ہے نا ٹھہریے گا، ہم پھر ملیں گے، شاید ایک اور بارش ہوگی، شاید کوئی اور یاد ہوگی، شاید کوئی پرانی محبت پھر سے دل کے دروازے پر دستک دے گی۔ تب تک اس انتظار کو اپنے پاس رکھیے گا، کیونکہ اگلی ملاقات میں بات صرف محبت کی نہیں ہوگی، بات ہوگی ان احساسات کی جنہیں ہم سب محسوس تو کرتے ہیں مگر لفظوں میں کہیں نہیں۔ میرے اگلے لمحات کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، یعنی کہ طاہر زمان کی دعاؤں میں آپ ہمیشہ شامل رہیں گے، رہیے گا خوش، یعنی کہ ہمیشہ بائے بائے، ٹاٹا، فی امان اللہ۔

ऐसा सो लाइव कॉल सिलसिला 03-19-19-899 गुरु जी नाम से मंग सेरा पर लाइव कॉल बांधे सुगर आंद्राजी के जाना नखफराजी आउखते जाना

रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk।

0: Έλα.
1: Radio Dilbar, अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk. Radio Dilbar, अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk.

0: सिफर 938 2 84 495। अस्सलाम वालेकुम। जी सुख खबर कवई देखम
1: जैना
0: नरगस खबर कवई दे सोबैना खजीदास तो प्रोग्राम के हर कले स्टडी मुशु आयु खे अमा सासु पर दुआ रंग खबर लगे तेजी कोई कहना नैना सिग्नल न होकर उसकी आवाज तेज
1: कर
0: सबर तो आए शेर मोरवड़े दे टफा खुद बारान हवाले
1: सरा
0: अल्लाह अल्लाह डेर मन न कोमा खलका मतलब सोच लग जो फरमान भाई तकालो कमा नुजब हो तो सवामा
1: दीदी
0: संदर टाइटल टपो दीदी टपो टाइटल याद हो तवाम सही तो प्रोग्राम और बदवा सलाम ली गई वालेकुम अस्सलाम डेर ज्यादा शुक्रिया नरगस मुंगसरा द स्वाबाइना द टफो चिगम दे के ना यमशा एंड वकास सहर बताओ सर्च के यूट्यूब के चुसंग सर्च के फर्स्ट के बताओ सदगा टफेरा जी सही था 09238 2 84 495 टाइम कम दे जबरदस्त डिर जत कॉल आंसर अखलम अस्सलाम वालेकुम। ओके 09238 2 84 495 बांधे काल और गुरम जी सूख तेरा सर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वही जमा आवाज चिगम दे नोगा नाराजी पता नहीं लगी मोबाइल स्पीकर चिगम दे नोगा खत्म शवे दे और कना

0: की बंगड़ी बंग। 0938-200-495। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। 0938-200-495। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सो का उदकम
1: जैना
0: इस्माइल खबरें कवई द कलाबट ना दोस्त प्रोग्राम के हर कले स्टडी में शिवायु।
1: वालेकुम सलाम।
0: सिंह गई जुआन खरवान दे हालात वाकियात खरीद खेरा तबियतु ना यह लगे इस्माइल भाई चता रोक शुए। हेलो पता न लगी ची मुंग सरा फी टी सी एल के सो मसला दा को सो वजह दा। 0938-200-495। इस्माइल भाई ब्या चिकम दनु ट्राई हु कई बखनी सरबत न लगी ची सा सो आवाज वो ले कट शो। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम
0: जी। सो खबर कवे द कम
1: जैना शेख जाना ना जाहिद
0: जाहिद भाई द शेख जाना ना दास्ता प्रोग्राम के हर कले स्टडी मुशी वायु प्रोग्राम वावरे दो प्रोग्राम दरबानी संग लगी
1: यार अपन मार डियर हो गो ना के जब मैं तारेंगो का माँ चेहरेंग ने ने कड़ियाँ में उड़े बैठ रही रहूँ उम्र की
0: खा लेकिन न को खुश खबरी द डियर ज्यादा जो डियर कालरान बकी न्यू विराल लेकिन न्यू काल से उड़ुंबी उड़ुंबे पड़ुंबी जले काल उकल
1: अरे खबर है मेरे खुश है ना बदी वजह
0: खा बस अल्लाह मु खुशहाल साता और मन न कोम सहर उड़ी दी सबर आता वाई وعلیکم السلام ڈیرا زیادہ مننا

आप सुन रहे हैं दिलबर एफएम सवाबी से इस्लामिक ट्रांसमिशन, कुरान की तिलावत, सुन्नत भरी बातें और दिल को सुकून देने वाले लम्हे। यहाँ हर लफ्ज में ईमान की रोशनी है। दिलबर एफएम 94 सवाबी। दिलबर एफएम 94 सवाबी।

ना एंटी हियर लॉस टॉनिक वाले हो जदक बेलडो ना एंटी हियर लॉस टॉनिक ना तासुल कन डीरे ज्यादा फायदा उच तक गई उस दिल तयो सीधा पाती की कतासु जमंग पोजुत की सपटी बीमारी दी आ जमंग गपटी न बिल्कुल द वजूद द पटू बीमारो द खातिमे द पारा कम च द स्तास विख्त तबा गई आग बीमारे च द स्तास विख्त तबा गई आग बीमारे च स्तास द विख्त च कम दी दा उगदवाली तन प्री दी दा मसी दी जि दिल तला नूर जाते बीमारी द वजूद न पटी बीमारी खत्म हुई आगे द पारा जमंग बेलडो ना हियर ग्रोथ सीरम पिंजस रुपए बांधे दे कॉस्मेटिक जनरल मेडिकल सोने वाले उस पर दे की प्रोडक्ट दा पाती की गई जिद खुश की खबर को आगा जी नके लकान जी आगा दावाई जमंग पे विख्तो की खुशकी दा और जमंग द विख्तो खुशकी दे खत्म शी न बिल्कुल द विख्तो द खुशकी द खात्मे द पारा तासु जानता वाले जमंगा बेलडोना एंटी डिंडफ शैम्पू जमंग पे दगा बेलडोना एंटी डिंडफ शैम्पू की शामिल केटाकिनाजोल जिंक पिरेथियोन सेलेनियम सल्फाइड न्यू फार्मुलेशन नियासिनामाइड विटामिन बी थ्री फार्मूला जमंग पे बेलडोना एंटी डिंडफ शैम्पू की शामिल दा चिदी कीमत सलूर सौ रुपए रे जमंग पे बेलडोना एंटी हेयर फॉल शैम्पू की लेस एक्टिव इंग्रेडिएंट शामिल दी चिपागे की रिडेंसिल प्रोकप

0: 6565.
1: रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk.
2: वेलकम टू FM 94 ब्रॉडकास्टिंग लाइव फ्रॉम स्वाबी फ्रॉम 5 AM टू 1 AM.
3: आप सुन रहे हैं दिलबर FM 94 स्वाबी से इस्लामिक ट्रांसमिशन. आप सुन रहे हैं दिलबर FM 94 स्वाबी से इस्लामिक ट्रांसमिशन. रूहानी सुकून, ईमान की रोशनी और दिल को छू लेने वाले लम्हे.
4: या हबीबी या मुहम्मद या नबी.
3: कुरान, सुन्नत, अखलाकी सबक और रूहानी गुफ्तगू, ये सब सिर्फ एक जगह दिलबर FM 94 स्वाबी.

सवाबी और इसके मुजाफात में आजान का वक्त हुआ जाता है। बाकी इलाकों के रहने वाले अपने मकामी वक्त के मुताबिक नमाज अदा करें।

0: ये रेडियो दिलबर सवाबी है और आप रेडियो दिलबर FM 94 सवाबी से इस्लामी नशरियात सुन रहे हैं।
1: वेलकम टू FM 94 ब्रॉडकास्टिंग लाइव फ्रॉम सवाबी फ्रॉम 5 AM टू 1 AM।
2: रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए। हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk।
3: सर्दी हो या गर्मी, रेडियो दिलबर आपके संग संग।
4: रेडियो दिलबर, रेडियो ये है रेडियो दिलबर, आपकी दिल की आवाज।

0: रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk।
1: सर्दी हो या गर्मी, रेडियो दिलबर आपके संग संग।
2: रेडियो दिलबर रेडियो, ये है रेडियो दिलबर आपकी दिल की आवाज।

0: रेडियो दिल पर आपकी दिल की आवाज,
1: विल बी बैक बैक राइट आफ्टर द कमर्शियल ब्रेक.
2: द एलोपैथिक और द होम्योपैथिक द द्वाणु इलाजुन ना ना उम्मीद शिव बीमारान द पारा द उम्मीद जेरे हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल खो पे खबर न बल्कि द हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल ब्रांच ओस्तासु पखार सवाबई की प्राणी सुविधा कतासु

सलाम भाई संगे मी क्यूट गर्ल जैसे डा मैसेज करे डेरा मजन ची जे ठीक ठाक है महा वची अरियान यादु गनी ब्या बडी खलीता न प्रेड मगुरे वय वय वय वय कना रियल नु मुखले ब्या दिया दोमा।

0: राइट आफ्टर द कमर्शियल ब्रेक।
1: जिंदगी एक खूबसूरत सफर है। जब इंसान तंदुरुस्त हो तो हर दिन नया लगता है, हर सांस ताजगी भरी महसूस होती है। लेकिन जब बीमारी जिस्म पर दस्तक दे तो मुस्कुराहटों के रंग भी मधम हो जाते हैं। ऐसे वक्त में जरूरत होती है एक ऐसे मरकज़े शिफा की, जहां दवा के साथ साथ दुआ का यकीन भी शामिल हो। और अब वही यकीन, वही उम्मीद आपके अपने शहर सवाबी में, जहांगीरा रोड शाह मंसूर बाबा मदरसा के करीब शाह मंसूर में मौजूद है। हैदर मोमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी। ये सिर्फ एक अस्पताल नहीं, बल्कि इत्मीनान, भरोसे और शिफा की वो जगह है, जहां मरीज को फाइल नहीं एक इंसान समझा जाता है, जहां इलाज सिर्फ बीमारी का नहीं बल्कि इंसान के एहसासात का भी होता है। ज़ेरे निगरानी डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद, जो अपने तजर्बे, इल्म और खुलूस से हर मरीज के लिए शिफा का जरिया बने हुए हैं। उनके साथ मौजूद हैं हाई काबिल और महारत याफ्ता डॉक्टर्स की टीम, जो हर मरीज के इलाज को एक फर्ज, एक खिदमत और एक मिशन समझती है। चाहे मसला शुगर का हो या ब्लड प्रेशर का, मैदे के मसाइल हो या जोड़ों का दर्द, दमा, एलर्जी या सांस की दुश्वारी हो, खवातीन के अमराज या आसाबी थकन, हर बीमारी का कुदरती, महफूज और देरपा इलाज सिर्फ हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी में। यहाँ ना खतरनाक दवाएं, ना साइड इफेक्ट, बस खालिस होम्योपैथिक इलाज जो जिस्म के साथ दिल को भी सुकून देता है, क्योंकि यहाँ यकीन है कि शिफा दवा से नहीं दुआ से भी मिलती है। अपना अपॉइंटमेंट हासिल करने के लिए या बराहे रास्त डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद से राब्ता करने के लिए अभी कॉल करें 0331-939-4941। आपकी सेहत हमारा अज़्म, आपका एतमाद हमारी पहचान। हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी। कुदरती शिफा, दिल से दुआ। कुदरती शिफा, दिल से दुआ। हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी।
2: ज्वानी द ज्वानको न बगैर निमगिड़ी हुई कुचरता द दग ज्वानको पवख बाने गम उनकलेशी नुप रारवान वक की दग ज्वान के सासु द खाइस द खराबे दो बाइस जुड़ देशी द ऑयली स्किन औ द दानो द पारा यो डियर खास मेडिकेटेड फार्मूला डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी फेस वॉश, डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी क्रीम तुम चिप सलून।
3: रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए। हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk।
4: वेलकम टू FM 94 ब्रॉडकास्टिंग लाइव फ्रॉम स्वाबी फ्रॉम 5 AM टू 1 AM।
5: आप सुन रहे हैं दिलबर FM 94 स्वाबी से इस्लामिक ट्रांसमिशन।
6: आप सुन रहे हैं दिलबर FM 94 स्वाबी से इस्लामिक ट्रांसमिशन।
5: रूहानी सुकून, ईमान की रोशनी और दिल को छू लेने वाले लम्हे।
7: या हबीबी या मुहम्मद या नबी।
5: कुरान, सुन्नत, अखलाकी सबक और रूहानी गुफ्तगू, ये सब सिर्फ एक जगह, दिलबर FM 94 स्वाबी।